डार्क स्पॉट्स मौजूद हैं, डार्क सर्कल्स मौजूद हैं, या आपके हाथ पे कोई दाग है जिसकी वजह से आपकी खूबसूरती महलल पैदा हुआ है, या और बॉडी पार्ट्स इस तरह जो आप उधर काला है मौजूद, मेरा मतलब है कि उसमें डार्क स्पॉट्स मौजूद हैं, जिस तरह अगर हाथ में ये हड्डी आप देख लेना, ये एल्बो, बाकी हाथ अक्सर खूबसूरत होता है, ये एल्बो बहुत जो है ना उसमें ये डार्क स्पॉट्स तरह ये डार्क सर्कल बना होता है, इसमें उसको अगर आपने खत्म कर लेना है तो 4-in-1 से खत्म कर सकते हो जी, बिल्कुल जी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फिर जब लोग इस्तेमाल करोगे, जब आप लोग इस्तेमाल नहीं करते तो यार मैं आज पता नहीं, मैंने चाय नहीं पी है, मुझे वो नहीं लग रहा, मैं एक तो नेटवर्क नहीं है, मेरे लिसनर जो है ना नहीं आ रहे, तो पता नहीं यार, हसाम को भी मजा नहीं आ रहा।

सो लेट्स सी कि कौन और हमारे साथ कौन कहां से, तो लेट्स सी अनदर कॉल जी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम.

ओके जी जैनब मानसर से अस्सलाम वालेकुम हसाम भाई, कैसे हो? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और अपना नहीं होता जो तस्वीर में आपके साथ खड़ा है, अपना तो वो होता है जो हर तकलीफ में आपके साथ खड़ा है। तमाम सुनने वालों को सलाम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच जी। और मेरा भाई एक भाई ये बार बार कॉल करने का कोशिश कर रहा है लेकिन आज बात नहीं हो सकी कि मेरे ख्याल में आप लोगों से, क्योंकि बहुत ज्यादा पता नहीं कि क्या मसला चल रहा है। थैंक यू सो मच और वालेकुम अस्सलाम जैनब, मेरी प्यारी बहन जो आप इतनी दूर से मानसर से आप आए हमारे साथ प्रोग्राम में, आपने अपनी खूबसूरत सी अल्फाज को शामिल कर लिया और आपने बिल्कुल ठीक कहा, वही अपना होता है, वही अपना होता है कि ताकि दूसरों की तरह आपको वो भी मुश्किलों में, मुश्किल वक्त में आपको अकेला ना छोड़े, आपके हाथ को हाथ में थामे और आपकी हर मुश्किल को अपना मुश्किल ही समझे। लेकिन आजकल इस तरह के लोग आपको बिल्कुल भी कहीं भी नजर भी नहीं आएंगे।

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
0: यू आर लिस्निंग रेडियो अमन नेटवर्क
3: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू सो स्टे ट्यून्ड
0: 88.4 एफएम।
4: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
0: Welcome to Radio Aman 88.4.
5: गुलोनी होरिस्ता पुंदे हो माह के डेरी ज्याते हरा बेवे नु दुम रजर सिंगर टिक्षुले यह हो रेन हो रे माह हो माह के डेरो कपनोई क्रिक्री में सेमाल करल हो मा ते ही सु रिजल्ट ओ फायदा न कड़ारा अव चे कला मा उरूसा शॉपिंग सेंटर ना जान द पारा इश्म क्रिक्री मराओडल नु मा ते डेर जबरदस्त रिजल्ट राको रजा गुलोनी हो रे जे हम जान

मेरी कला कर। मेरे चेहरे पर पहले दाने और दाग धब्बे थे। मैंने अपने चेहरे के लिए मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें, एक्ने ट्यूब्स और मुख्तलिफ फार्मूले आजमाए, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने अरूसा शॉपिंग सेंटर से एश्मा एक्ने ट्यूब और एश्मा एक्ने सोप लिया। चंद दिन इस्तेमाल के बाद मेरा चेहरा गोरा और दाग धब्बों से मुकम्मल तौर पर साफ हो गया। अब मैं तमाम रेडियो लिसनर्स को ये पैगाम देना चाहती, अगर आपने भी अपने चेहरे पर मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें या टोटके आजमाए हो और फिर भी कोई रिजल्ट न मिला हो, तो एक बार जरूर एश्मा एक्ने ट्यूब और एश्मा एक्ने सोप आजमाइए। एश्मा एक्ने

0: जिंदगी में सुकून सेह से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास और शफा का भरोसा। इश्मा हर्बल ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा एक ऐसा ऑयल जो बेशुमार बीमारियों में मुफीद है, जैसा कि मैदे की तेजबियत, जलन, बदहजमी, बोक की कमी, कब्ज, दिल और गुर्दों की तकलीफ, जोड़ों और पट्टों के दर्द, सर दर्द, मुंह के चाले, ये सब तकलीफ अब खत्म, क्योंकि हल है सिर्फ और सिर्फ इश्मा हर्बल ऑयल। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये शिफा बहश ऑयल जिस्म के अंदर और बाहर दोनों के लिए मुफीद।
1: پروګرامو نه هم ټول خسته دي د شهاب رور په ساده توپ خسته دي او د کاری محمد علی پشان د برکت هم لا نور خسته دي او زمونږ د مشر اکرام خان کمپنی دا د داسې ښکلی نوجوان کمپنی دا چې د شیراز او د انعام رور پشان ځوانان لري داسې کامران کمپنی دا

कर मेरे चेहरे पर पहले दाने और दाग धब्बे थे। मैंने अपने चेहरे के लिए मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें, एक्ने ट्यूब्स और मुख्तलिफ फार्मूले आजमाए, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने अरूसा शॉपिंग सेंटर से अश्मा एक्ने ट्यूब और अश्मा एक्ने सोप लिया। चंद दिन इस्तेमाल के बाद मेरा चेहरा गोरा और दाग धब्बों से मुकम्मल तौर पर साफ हो गया। अब मैं तमाम रेडियो लिसनर्स को ये पैगाम देना चाहती हूँ, अगर आपने भी अपने चेहरे पर मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें या टोटके आजमाए हों और फिर भी कोई रिजल्ट न मिला हो, तो एक बार जरूर अश्मा एक्ने क्यूब और अश्मा एक्ने सोप आजमाइए। अश्मा

दिन लमा बिल्कुल ग्लोबल 91 चुकम दे आगामी प्रोग्राम माने हरना दे सिर्फ दरे रेडियो बनी करक लकी ओ दिन लवा टांग रेडियो बने प्रोग्राम माने हरदे ठोल मिनो वाला प्रोग्राम के हर कलेवी इने इश्मा कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम के हर कलेवी खजी बिल्कुल नन नहा मुहर्रम दे और डेरो बिल्कुल वीर रेजा सईदा नो बिल्कुल नन हाँ रिजा दिन ला सुबह रिजा दा डेरे ज्यादा जुगम दे सवाब बिल्कुल दे सुख रिजावन सी नो दे डेरे इंतहाई जो सवाब दे या दिन ला सबूत और बलव रिजा मतलब नो और दस मुहर्रम बने रिजा या दिन लवा दस ग्यारह जो रिजा दो डेरे इंतहाई जो सो भी दे नो डेर महीने वालों बा रिजा नन वली भी हो बिल्कुल ज्यादा खबर कम अच्छे सुमरहा टीम दे इश्मा कॉस्मेटिक टीम दे आखले दो गानों की जरूर चुकम दे यूसु दई दोगोनों के मिस चुकम दे बिल्कुल माहिर है सही है खाजी प्रोग्राम की बिल्कुल खबर कीजिए और इश्मा कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट वाले सर इश्मा कॉस्मेटिक की कंपनी पे वाले सर तो उसमें बिल्कुल तलाशी दे प्रोग्राम की शिरकत कवाले से टिक शॉप पो दी नंबर वन कॉल कवाले से पो 0331 5236 या दिन लवा 0345 933 25 80 दिन नंबर बने प्रोग्राम से लाइव कॉल कवलिशे और मैसेज हम कवलिशे तो उसका रेडियो बने चर चर की आवाज हो रही करक रेडियो बने तो आवाज हो रही या दिन अलवा लकी रेडियो बने आवाज हो रही इश्मा कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम हो रही या दिन अलवा टांग रेडियो बने प्रोग्राम हो रही नो बिल्कुल तो उस मुताबिक प्रोग्राम से मैसेज हम कवलिशे और दिन अलवा कॉल हम कवलिशे

0: हाँ जी बिल्कुल सही मैसेज कर दे ओवेचे तारिकजी साहब को स्पेशल दुआ सलाम पेश करता हूँ। कैशल मोबाइल जोन मंगल मेला वजीर किला बनो डेरा मनाना मैसेज के बोले जो जहान मनाना बिल्कुल तो साहब मंगल मेले के इलाज मार्केट के दो कैंसर बैसरा देश में टूल प्रोडक्ट बिल्कुल मिले जी दिन अलावा दासी बिल्कुल हाइबर प्लाजा जी की मधुगना मौलाना सिर्फ सराय ने मौलाना अब्दुल हालिक सिर्फ सरा तुस्ता इसमें कॉस्मेटिक टूल प्रोडक्ट मिले जी हाइबर प्लाजा की दुकान नंबर 4 से ठीक सा। दिन लो शाजी अल्लाह की मरबत ने मैसेज कर दे आवाज बिल्कुल ओके दे 88.0 बने इन लकी रेडियो बने हाँ 88.4 करक और 88.4 टांग रेडियो बने आवाज ओके दे जरा मरने शाजी अल्लाह की मरबत ने मैसेज हो गो दिन अलवा सानी हटर के बिरी के हम मैसेज करे दे विच दुआ सलाम सजी संगे आवाज ओके हैं करक रेडियो बांधे एम एस जी तलाम चोले से तलाम सही दफा सलाम और बल्द सर से ले करी दी हाँ जी बिल्कुल कॉल वहाँ से मिले बिल्कुल कॉल तरफ तरजीह प्रोग्राम से कॉल से मिले भी अच्छा जी दिन लविचे धुमरा लेट सलाम तारिक भाई आवाज ओके दे लकी रेडियो बांधे और विच सफाई का और फातिमा के नात लंडियो ना और मान्योर गुलता पलवशा सितारा था और जलाल और शहीन था सलाम बिल्कुल सलाम दखे था वरसर डेरा मने ना और ये चे दाहो अजीज खबर वाल ब्यार हुए खजी डेरा मने ना थैंक यू मैसेज के बोले और वे चे तारिक भाई मिर्जी भाई दे शोता रूसी बिल्कुल अब रूसी सही दो फाई के औफात में केनाथ लंडी बना मैसेज करने बिल्कुल लंडी भाई के तो द जमील खान से सरा द स्मार्ट टोल प्रोडक्ट मिला जी किसी काल बने फर्स्ट कॉलर ऑफ द शो काल तरह तरदी मुर्गाम से कॉल से मिला भी किसी जब काल बने सो को देखे हम देना दी असलाम वालेकुम जी सो खबर है क्यों जरा डोमेल ना सो खबर है क्यों असद सरंग शाये शाह सही बेले दासे खफा हवा लगी है जी
1: ना ना ये खफा मसरूफ
0: है खफा नहीं मसरूफ है यान चे खफा नहीं मसरूफ है अच्छा अच्छा खुशोल ये माशाल्लाह बस भी होटल रशा खबर दे चुके खुशोल भी और बद वगाने हाँ दी सही दो वगाने में दर्द कभी शाह

मेरे चेहरे पर पहले दाने और दाग धब्बे थे। मैंने अपने चेहरे के लिए मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें, एक्ने ट्यूब्स और मुख्तलिफ फार्मूले आजमाए, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने अरूसा शॉपिंग सेंटर से अश्मा एक्ने ट्यूब और अश्मा एक्ने सोप लिया। चंद दिन इस्तेमाल के बाद मेरा चेहरा गोरा और दाग धब्बों से मुकम्मल तौर पर साफ हो गया। अब मैं तमाम रेडियो लिसनर्स को ये पैगाम देना चाहती हूँ, अगर आपने भी अपने चेहरे पर मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें या टोटके आजमाए हों और फिर भी कोई रिजल्ट न मिला हो, तो एक बार जरूर अश्मा एक्ने ट्यूब और अश्मा एक्ने सोप आजमाइए। अश्मा

0: मत होना।
1: जिंदगी में सुकून सेह से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास और शफा का भरोसा। इश्मा हर्बल ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा एक ऐसा ऑयल जो बेशुमार बीमारियों में मुफीद है, जैसा कि मैदे की तेजबियत, जलन, बदहजमी, बोक की कमी, कब्ज, दिल और गुर्दों की तकलीफ, जोड़ों और पट्टों के दर्द, सर दर्द, मुंह के चाले, ये सब तकलीफ अब खत्म, क्योंकि हल है सिर्फ और सिर्फ इश्मा हर्बल ऑयल। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये शिफा बहश ऑयल जिस्म के अंदर और बाहर दोनों के लिए मुफीद। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का मुकम्मल इलाज, हर दर्द का आसान हल।

0: ये हबीब बलून कल शादी है और तुम अभी तक तैयार नहीं हो।
1: ओह खदीजा, अभी बालड़ा टेम नहीं मिला और फिशर के बगैर चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
0: इतनी सी बात पर परेशान क्यों? ले आओ, मैं अभी लगा दूँ इसमें हरजन फिशन। बस बस में तुम्हारा चेहरा हो जाएगा चमकदार और ताज़ा।
1: वाकई खदीजा, अभी जब 10 मिनट में इतनी फर्क।
0: हाँ जी, ये कोई आम फेशियल नहीं, ये है इश्मा का अर्जन फेशियल जो चेहरों को लम्हों में ताजगी और चमक देकर दिलकश बना दे।
2: इश्मा अर्जन फेशियल, सिर्फ 10 मिनट में खूबसूरती।

कला कर। मेरे चेहरे पर पहले दाने और दाग धब्बे थे। मैंने अपने चेहरे के लिए मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें, एक्ने ट्यूब्स और मुख्तलिफ फार्मूले आजमाए, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने अरूसा शॉपिंग सेंटर से अश्मा एक्ने ट्यूब और अश्मा एक्ने सोप लिया। चंद दिन इस्तेमाल के बाद मेरा चेहरा गोरा और दाग धब्बों से मुकम्मल तौर पर साफ हो गया। अब मैं तमाम रेडियो लिसनर्स को ये पैगाम देना चाहती हूँ, अगर आपने भी अपने चेहरे पर मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें या टोटके आजमाए हों और फिर भी कोई रिजल्ट न मिला हो, तो एक बार जरूर अश्मा एक्ने ट्यूब और अश्मा एक्ने सोप आजमाइए। अश्मा

0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-9363-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-2648-435।
0: Rocket, wake up, man. 88.4 Dial.

जवाब दिया, हमें अमीर इब्ने ज़ियाद का आखिरी हुक्म मिल चुका है कि या तो हुसैन यजीद की बैयत करें, और अगर वो इनकार करते हैं तो अब मजीद मोहलत नहीं दी जाएगी। हम उस वक्त 9 मुहर्रम की असर को ही इस सब का, यानी कि अहकाम जो थे कि 9 मुहर्रम की असर को ही सब का काम तमाम कर देंगे और इमाम हुसैन को शहीद कर देंगे। यानी कि ये जो हमारी डेवलपमेंट हुई है, जो हमारे लश्कर आगे बढ़ रहे हैं, इसकी वजह काफिला हुसैनी पर हमला करना है और इस हमले में हुसैन समेत सबको शहीद करना है, और ये आखिरी हुक्म जो है इब्ने ज़ियाद की तरफ से आ चुका है।

और उसके बाद मेरे ख्याल में कि दूसरे नंबर पर हबीब इब्ने मज़ाहिर होते हैं, वो तफसील के साथ कल आपको जब हम 10वीं महरमुल हराम के वाकयात बताएंगे तो आप अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर पाएंगे। लश्कर की तरफ से ये कह दिया गया अमर बिन साद की तरफ से, इब्ने ज़ियाद की तरफ से, शिमर की तरफ से कि आज की सपहर, ये जो आज 9 मुहर्रम है ना, आज की सपहर हम जो है काफला हुसैनी के ऊपर हमला करने वाले हैं, जंग करने वाले हैं, इसके बाद मजीद मोहलत हम किसी तरीके से भी आगे नहीं दे पाएंगे। हज़रत अब्बास ये पैगाम लेकर आते हैं और इमाम हुसैन के पास वापस आए। इमाम ने दुश्मन का इरादा जानकर गाजी अब्बास से एक ऐसा जुमला फरमाया जो तारीख के माथे का झूमर हमेशा बना रहेगा। जी सामिन किराम, इमाम हुसैन ने अपने भाई अब्बास आलमदार से कहा कि जाओ अब्बास दुश्मन के पास वापस जाओ और उनसे कहो कि हमें आज की एक रात की मोहलत दे दें, जंग को कल तक के लिए टाल दें। अल्लाह गवाह है कि मैं अपने रब के लिए नमाज पढ़ना, उसकी किताब कुरान की तिलावत करना और उससे कसरत से दुआ इस्तग़फ़ार करना कितना पसंद करता हूँ। सामने कराम गाजी अब्बास दोबारा दुश्मन की तरफ गए और इब्ने साद को इमाम का पैगाम सुनाया। पहले तो वो हिचकिचाया क्योंकि उन्होंने एक मुसम्मम इरादा किया हुआ था 9 मुहर्रम की शाम को ही जंग करने का, यानी कि आज की शाम को। कहते हैं कि पहले तो वो हिचकिचाया लेकिन लश्कर के कुछ लोगों की मलामत ने बुरा भला कहा, उन्हें बुरा भला कहा। उमर बिन साद इस बात पर राजी हो गया कि ये आखिरी रात शब अशूरा आले रसूल को मोहलत के तौर पर दी जाएगी। जी जनाब, ये एक लाजवाब वाकया इसके बाद हमारे सामने आता है। हज़रत इमाम हुसैन का एक दिन की मोहलत का मकसद कोई खौफ या डर सामीन कराम नहीं था, बल्कि वो रब के हजूर अपने दिल की हसरत को, तिलावत कुरान पाक को, नमाज को, दुआओं को इस आखिरी रात में एक आला मकाम तक पहुंचाना चाहते थे।

मुहर्रम रात का अंधेरा छा गया, शाम होने को थी। कर्बला के दश्त में चारों तरफ यजीदी पहरेदारों का शोर था, लेकिन आले मोहम्मद के खेमों से अल्लाह की हमदोसना और तिलावत कुर्बान की धीमी धीमी आवाज़ें आ रही थी, जैसे शहद की मक्खियों की भिनक हो। इस रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम असहाब और अहले बैत को एक खेमे में जमा किया। ये तारीख का वो सबसे सच्चा और जज्बाती खुतबा था सामने, जिसने वफादारी के मेयार बदल दिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब की तरफ देखा और फरमाया, मैं अल्लाह की तारीफ करता हूँ और हर हाल में मैं अपने असहाब से ज्यादा वफादार और बेहतर असहाब किसी के पास नहीं जाता, और ना ही अपने अहले बैत से ज्यादा सिला रहमी करने वाला और नेक खानदानी किसी को जानता हूँ। अल्लाह तुम सबको मेरी तरफ से जजा दे। फिर इमाम हुसैन ने वो बात कही जिसने दिलों को जला कर राख कर दिया। इमाम हुसैन कहते हैं, सुनो, दुश्मन को सिर्फ मेरी तलाश है, अगर वो मुझे पाएंगे तो तुम में से किसी से उनको गर्ज नहीं है। अगर मैं उनके हाथ लग जाऊं, बस उनकी जो तमन्ना है, उनकी जो ख्वाहिश है, वो सिर्फ मुझे पाना है। वो तुम सबसे किसी से कोई गर्ज नहीं रखते हैं। ये रात का अंधेरा तुम्हारे इर्द गिर्द फैल रहा है। मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, बल्कि ताकीद करता हूँ कि तुम में से हर शख्स मेरे अहले बैत के एक एक जवान का हाथ थामे और इस अंधेरे का फायदा उठाकर यहाँ से निकल जाए। तुम सब अपनी अपनी जानें बचा लो, मुझ पर तुम्हारी बैयत का कोई हक बाकी नहीं रहा, तुम सब आजाद हो।

आज 9 मुहर्रम है और आप अपने रेडियो डेर असमिल खान में अगर आप मौजूद हैं तो आप समाप्त फरमा रहे हैं हमारा ये प्रोग्राम ग्लोबल एफएम 91 की लाइव फ्रिक्वेंसी पर। आप पहाड़पुर में मौजूद हैं तो रेडियो पैगाम पर सुन रहे होंगे, और अगर टाक में मौजूद हैं तो रेडियो अमन 88.4 से लाइव फ्रिक्वेंसी के ऊपर आप हमारा 9 मुहर्रम का खुसूसी प्रोग्राम सुन रहे होंगे, जो कि दास्तान-ए-करबला का एक हिस्सा 9 मुहर्रम के दिलसोज वाकयात है।

0: चला तीर चला जेरा जल मासूम का तीर चला धरती से वो साल किया फुल खून दे विच गलतान आया आखरी शेरे के जदा अकबर पाक अजान वीर हुसैन नमाज पढ़ी नमाज करें दी नाज करी खड़ी खुद सारी बन कुरान आया बन कर
1: शुक्रिया जनाब अमीर हुसैन कोटवली दास से हमारे साथ हमारे वसीब थे और शायर हैं बहुत प्यारे तरीके से जो है उनका इंतखाब होता है जिस तरफ भी वो शायरी करते हैं कमाल की करते हैं बहुत शुक्रिया उनका प्रोग्राम का हिस्सा बन गया फातिमा हमारे साथ हैं पानी तेरे शहर का कोसर से मीठा लगा इसकी हवा है दवा खाक खाक का खाक खाके शफा जन्नत है रोजा तेरा जन्नत है पूरी करबला सारी दुनिया हुसैन हुसैन

0: جی سامع کرام، تینوں ریڈیو اسٹیشن دیر ازمل خان، گلوبل ایف ایم 91 پہاڑ پور میں ریڈیو پیغام، اور ٹانک میں ریڈیو امن کی توسط سے آپ یہ ہمارا پروگرام سنتے ہیں، اور اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ جو تعاون رہتا ہے وہ کیسن نیچرل پاکستان کا ہے، اور کیسن کمپنی آپ کے علاقوں میں جو بھی تین بڑے شہر ہیں یہ ان کے علاقوں میں ہمارے پروڈکٹ بھی موجود ہیں اور آپ ان سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ سو بہت شکریہ آپ کا کیسن کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ ایک اور بہت ہی ریگولر لسنر ہمارے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام،
0: جی شبرا استاد سنل موجود ان کیس کال سے، ان کے حالے ٹھیک ٹھاک ہے تو سب ماشاء اللہ بات کر رہے تھے شبرا روف المعروف شبرا استاد جو ہے کیج سے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور کل بھی انہوں نے یہی پیغام دیا تھا کہ خواتین جو ہے جس طریقے سے اہل بیت کی خواتین نے پردے کا خیال رکھا اور مشکل وقت میں نماز کو نہیں چھوڑا، اور تیسرا بڑا کہ حق سچ کہتے ہوئے انسان کو بالکل بھی ڈرنا نہیں چاہیے، اور جہاں پر بھی حق کی بات کرنی پڑے وہاں پر حق کی بات سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ایک اور میسج، اور کہتے ہیں کہ آپ کو ہم بہت اچھا ہے سب سننے والوں کو اور آپ کو سلام، मोहम्मद अजहर एक दफा फिर से पहाड़पुर से हमारे साथ मौजूद थे, उनका बेहद शुक्रिया।
2: मेरे तुझे सलाम।
0: अलीसा जो है टांग से हमारे साथ मौजूद है।
2: या हुसैन अस्सलाम या हुसैन
3: या हुसैन।
0: और कहते हैं किसी को जमाने की दौलत मिली, किसी को जहां की हुकूमत मिली, मैं अपनी किस्मत पे कुर्बान जाऊं क्योंकि मुझे हजूर पाक की उम्मत में जगह मिली। सलाम टांग से अनीसा बात कर रही हूँ। कहते हैं गलती पर शर्मिंदगी ऐब नहीं है बल्कि जमीर जिंदा होने की दलील है, और माँ बाप की दुआ वक्त तो क्या नसीब भी बदल देती है। एक और कलर हमारे साथ हैं और उनको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम
0: जी।
4: जनाब खलील भाई क्या हाल
0: है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ, नाम बताएंगे जनाब?
4: खान जमान जंजुआ रामपुरा गढ़वाल।
0: अच्छा जी, रमजान से जनमजान
4: खान जमान जंजुआ।
0: खान जमान जंजुआ, मोहतरम कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं?
4: अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए जी? खैरियत है
0: जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र।
4: आपका प्रोग्राम लगातार सुन लेते हैं।
0: अच्छा जी,
4: अच्छा
0: जी,
4: नसीहत
0: बिल्कुल।
4: अच्छा जी,
0: जी जी
4: रुबाई।
0: जी जी अरशाद
4: अपील रहम जी कर मंजूर मौला। अपील रहम जी कर मंजूर मौला, करबल दे मैदान दे वास्ता ही जिता प्यासी कुठी आल नबी दी, दगू खानदान दा वास्ता ही, जेकू खीर पींदे लगा तीर गले, वो मासूम दी जान दा वास्ता ही, जमान जारी रखी जैने दे ते मंजल, वो कारी कुरान दा वास्ता ही।
0: जनाब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। रंगपुर अड़े से अक्सर ये मैसेज करते रहते हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। खान जमान जंजुआ बहुत शुक्रिया। और अनीसा का मैसेज पढ़ रहे थे, गलती पर शर्मिंदगी ऐब नहीं बल्कि जमीर जिंदा होने की दलील है, माँ बाप की दुआ वक्त तो क्या नसीबी बदल देती है, वुजू से शक्ल, कुरान से अकल, और कहते हैं कि नमाज से नस्ल जो है पाक होती है। आप लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं 03449363666, 03444-936-3366 पर, और देखते हैं और कौन
2: है।
0: टांग से भी लोग हमें सुन रहे हैं क्योंकि हमारी आवाज टांग FM के ऊपर भी जा रही है, लेकिन टांग वाले आजकल खामोश हैं और उनकी जो क्या कहते हैं शमूलियत है वो बकदरे कम है। इसकी वजह क्या है, क्या गर्मी टांग में ज्यादा है, लोग सो रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम खलील भाई, इस तड़े माशे तबीयत चरंगी? जी तबीयत मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जी ठीक है। और ये कौन है? दिलराज हैं जनाब। IM दिलराज टांग से ये हमें मैसेज कर रही हैं जी, बहुत शुक्रिया।
2: जिनको
0: जनाब केसन नेचुरल पाकिस्तान का ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है जो की हमारी मुहर्रम अल हराम की खसूसी नशरियात हैं, और केसन के प्रोडक्ट आपके इलाकों में हर जगह मौजूद हैं, चाहे आपको हेयर ऑयल की ज़रूरत हो, चाहे शैम्पू की, चाहे फेस वाश या अदर प्रोडक्ट, या जैसे कि हमारे हेल्थ के हवाले से प्रोडक्ट मौजूद हैं जैसे कि वेट कम पेट कम हमारी प्रोडक्ट है, इसी के साथ साथ जो है हाजमे को सेट करने के लिए, अनकंट्रोल्ड हाजमे को कंट्रोल में लाने के लिए हाजमा कंट्रोल सिरप है, या फिर पुराने दर्दों के खात्मे के लिए, जोड़ों के दर्द पट्ठों के दर्द के खात्मे के लिए केसन शिफाए दर्द ऑयल हमारा मौजूद है, तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ और उनको मौका देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मास्टर साहब आ चुके हैं हमारे साथ टांग से। मास्टर फतेहुल्लाह साहब कैसे हैं? मास्टर साहब ठीक है, आप खैरियत से हैं?
5: अच्छा जी, मुहर्रम जी प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत अच्छी तमोज, और क्या जो बयान किए हमने इसे बहुत सबक दिया, और सारे साथियों ने सारे सिस्टम ने आपके वो गाय गलाए हर दिन की जो वो आपको बयान की, और साथ में इसमें फायदा भी उठाया इंशाल्लाह, मालूम भी हुई अल्लाह ताला इसको मालूम को मामूलात में तब्दील कर लें।
0: आमीन आमीन आमीन। ये अच्छी, ये असल बात यही है कि ये जो हमारे बिल्कुल ये सब कीमती बात, तो बहुत शुक्रिया आप लोग सुन रहे हैं, और ये हमारे लिए एजाज की बात है कि कुछ नई बातें ये आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है। और कल का आखिरी प्रोग्राम भी हमारा है दास्तान करबला के हवाले से, तो वो भी मुलाहजा कीजिएगा इंशाल्लाह, उससे भी आपके इल्म में और भी इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया, और कुछ कहना चाहेंगे मोहतरम?
5: बाकी सारे साथियों को और आपको अल्लाह ताला मुबारक
0: जी। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया मोहतरम। हमारे साथ मौजूद है मास्टर फतीउल्लाह साहब टांग से मौजूद है, और कहते हैं कि आपके प्रोग्राम ने हमें बहुत ज़रा फायदा दिया है। जी वेलकम। और हर इवेंट्स के हवाले से हमारी ट्रांसमिशन हम तरतीब देते हैं, और उसमें डेफिनेटली हमारी मेहनत भी शामिल होती है, और उस मेहनत के बलबूते पर ही कोई प्रोग्राम होता है, क्योंकि जो इस्लामिक जो रिलीजियस प्रोग्राम होते हैं ना, उनके लिए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आपको सुनने वाले हर फिरके के लोग हैं। मुझे इस वक्त किसी एक फिरके के लोग नहीं सुन पा रहे हैं, मुझे डेरा इस्माइल खान टांग और पहाड़पुर में बैक वक्त सुना जाता है, तो इसमें मुख्तलिफ फिरके के लोग पाए जाते हैं, और हर फिरके की जो तारीख होती है वो मुख्तलिफ होती है, उनके अपने अकीदे के मुताबिक मरखीन उसको तोड़ते मरोड़ते हैं या जो भी करते हैं। लेकिन अब जैसे हम करबला को उठाते हैं, तो करबला के वाक़ात आपको अहल सुन्नत में कुछ और मिलते हैं, अहल तशी के अंदर आपको कुछ और मिलेंगे इसी तरीके से, लेकिन उनको न्यूट्रलाइज करके बैलेंस करना और आप तक ऐसा मवाद पहुंचाना कि जिसके ऊपर किसी का भी एतराज़ ना हो, ये एक मुश्किल मरला होता है। मैं अपनी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि जिनके स्क्रिप्ट की बदौलत ऐसा स्क्रिप्ट के जो अथेंटिक होता है, जो मोर पावरफुल होता है, और जिसके अंदर कोई इख्तलाफी बात जो है आपको सुनने को नहीं मिलती है तारीख के, वो औराक हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर हर फिरका जो है वो इसके ऊपर जो है उसको एतराज़ नहीं होता और उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है। जनाब ये था हमारा आज 9 मुहर्रमुल हराम का असर तसुआ का खसूसी प्रोग्राम, आप लोगों ने मुलाहिज़ा किया। कल भी हमारा आखिरी ये जो दास्तान करबला है उसका आखिरी पार्ट कल का योम आशूरा का दिन है, तो योम आशूरा के सारे वाक़ियात के साथ और खसूसी तौर पर कल की जो शहादत है हजरत इमाम हुसैन की शहादत आपके साथ कल के प्रोग्राम के अंदर इंशाल्लाह आपके साथ आपकी समातों की नजर करेंगे। तो कल तक के लिए इजाजत देंगे अल्लाह।

वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जुकुन फयकून का मालिक है, एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
3: बीमारी हक दे अवेलाजी सुनत अमल दे, अवेलाजी सुनत अमल दे।
4: ओस कचेरे तासु तदा से अमराज भी चितासु वरना डेर परेशान आयो और डेर गर्जिदली कड़ी दली यो, डेर गर्जिदली कड़ी दली यो।
3: नो बिल्कुल मायूस के गई माँ, मायूस के गई माँ। अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रौड़े और द हकीम मौलाना नूरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले, तरला सकवले शे।
4: और दोनों मालूमात दे पारा पदग नंबर काल कवले शे
3: 0319-55-23-404।
5: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
3: जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल, जमजम हेयर ऑयल द विख्तानो कुलाकड़ी यो पदवा और विख्तानो लावर कवि यो कुदरती चमक, चमक। आया स्तासु पे विख्तानों की खुशकिदा, विख्तान मो गुर्जेगी, विख्तान मो वदन कवि या मो विख्तान मातीगी। जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल हम स्तासु दफारदी कुमचे स्तासु दे विख्तो खुशकी खारख पर मुकमल तो खत्म भी। नो बिल्कुल जी, हम उस जाला इंतखाबो की जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल चिहाइस्त मो यो फुद्वशी। नो द मिलाविदो पता याद साथी फ्रंटियर फर्नीचर चारफाई नाइलोन मार्ट मध्य मुकाबिल गली गुलाबी पम टांग सिटी। राबता नंबर 0343-912-17-45।
6: चाहतों के रंग, अमन के संग, अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
7: गुलबारी खान बाबा चरता रवानी।
8: जमाल खान बच्चिया पदे में दबाने में सख दर्द दे।
7: गुलबारी खान बाबा तो खुदेर तकलीफ की रवानी, दुमरा सख दर्द दे।
8: जमाल खान बच्चिया पर डॉक्टरानो बांधे में जान तबाव बर्बाद वाचाओ कदासी खुले गुंदे की डॉक्टर दर तमालूमी।
7: उले ना गुलबाली खान बाबा तेलो गुदरेगा चिपा तदाला दर कमा। डॉक्टर नूरसन खान से लवर्षा चिपा मखा दिला जुशी। मड़ा बाबा दा पुख्तना खुदे उनका चिदे की नी चरता।
8: जमाल खान बच्चे मालूमा तेरा का चिदा कम जे किदा।
7: ओले न गुलबाली खान बाबा दा पता जान सरा नोट का और फौरन वर्षा। डॉक्टर से पठान की तंग बाजार की नूर मार्केट की नास की और दशहर अतु बजू न वाखली माजिगर तर सलूर बजू पूरी द मरीजानु इलाज कवी।
8: جمال خان بچیا با عمر دی برکت شا داد اوس ورزم او د خپل بیماریانو علاج تی کوم.
9: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے, معلومات کو جگاتی ہے, دنیا کا حال بتاتی ہے. یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے. یہ آواز ہے جو امن کی ہے. یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے. ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام. امن کا